0: एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा
1: रेडियो आधी खुला 105.4

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी को यह छोट अ अंतिम व्यापारिक विश्राम संगे स्वागत कार्यक्रम गांधीसिका भाग में यहाँ आज हम कार्यक्रम गांधीसिका भाग को इस सुंदर व्यवसाय में छौं। आजको व्यवसायमा रहेर श्रीमती खालका नयाँ पुराना लोकगीत भाकाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै अगाडि बढ़िरहेका छौं। यति बेलाको क्रममा हामी अर्को भाका जोड्छौं। सोही भाकासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामीसँगै रहनुहोला।

0: मस्तिष्क तथा स्नायु रोग, दम, छाती तथा फुक्स रोग, हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग का साथ ही स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार गरिन्छ।
1: सम्पर्क लोनिवा फार्मेसी, वालिंग आठ मिर्दी खरीबोट, मोबाइल 98565866।
2: Yamaha Monsoon Service Camp. Expert care for rainy ride. Just 24 to 30. दक्ष मेकानिक द्वारा देशभरि का 200 भन्दा बढी डिलर तथा आधिकारिक सर्विस सेन्टरबाट स्तरीय सर्विस तथा यामाहा एफआई स्टेशनबाट जेन्युइन एफआई हेल्थ रिपोर्ट पाउनुहोस्।
3: यही ज्येष्ठ 24 गते देखि 30 गते सम्म यामाहा मनसुन सर्भिस क्याम्पको अवसरमा पाउनुहोस्। लेबर चार्जमा 50% डिस्काउन्ट, लुब्रिकेन्टमा 15% डिस्काउन्ट, स्पेयर पार्ट्समा 10% डिस्काउन्ट, 15 पॉइंट चेकअप र फ्री बाइक वास। थप जानकारीको लागि यामाहाको आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
4: यस यामाहा।

0: सीएचएस कार्ड र रिफरल लिएर आउनुहोला। पुनश 70 वर्ष माथिका भूपूहरूलाई रिफरल चाहिँदैन।
1: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागथुङ्गा पोखरा, फोन 061-552-493, 552-494, 582-778।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।